0: सारी शुभ्र
1: दादी भी जाए कामनी दादी भी जाए
0: शुभ्र सांदो तश्तस इन फुल स्विंग
1: रिमी जिमी
2: ओह यस

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो हो, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

वनवास के पश्चात अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं, जहां उनका राज्याभिषेक होना है। हनुमान जी तो वानर थे, वन में उनका वास था।

लड़के वाले आज आ रहे हैं और हम लड़कियां दिखाएंगे कि हम किसी से भी कम नहीं है। म्यूजिक।

लड़के वाले आज आ रहे हैं और हम लड़कियां दिखाएंगी कि हम किसी से भी कम नहीं है। म्यूजिक।